अस्सलामुअलैकुम चांद मामू, कैसे हैं आप? आज कल छुट्टी है, अब जुर्माना पड़ेगा। ओके, शायर सुनाए सीमा नून फ्रॉम भटेगरा।

ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: अमन दरूह संदरदा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: आज मेरे दागत था ये नजीर भाई था, अमीर शेर था, अबू तलहा था, जखंडी वाला था, और वली चाचा था, अबू मोहम्मद था, और दागत था चप्पल ग्राम का वोड़ी के सरे
1: अयान
0: अयान शेर था, और जमा का नसी था, कांडोरो आगत था, दागपलार था, सब्जी था, और दागत था रियाज था, जबी और हमीद के कदार था,
1: शाबाश
0: चाचा था, और सोख से जमावा जरूरी लियो तो तक कमाना देख सो के रिशेन खत की गी दिना माजरात वारू
1: बिल्कुल जी तोल दस सलाम वाले से दे बाजा मत से डेरे मन ने कहो खोलक बगोक मन मिला इसके देखे ना
0: ना ना कन ब्याह बसी के ना
1: ना खैर दे लग लग
0: ब्याह बसी
1: ना खैर दे लग लग यो टपा
0: यवा यवा
1: यवा पकार दे जा